0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears. Give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: Mum, I'm outside.
5: Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: Like a Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
4: Four beers, please, garçon!
3: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गरम हूँ।
1: अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

कोय। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भाव है साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिब तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाए।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस, लख लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: इज लाइक अ गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
5: Lights on. Shutters up, staff ready.
4: But today's customers don't start on the high street.
5: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
4: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
5: They walk into your competitors.
4: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday, the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
8: हॉन्सलो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
9: परंपरा भी
10: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT कॉल करें 07487-687-885
11: Like a Radio Network Proud Hospitality Partner Ragasan This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: Central Square. Traffic is busy and you will find a diversion. Now, the A1 into town, queuing traffic through the works at the Woodman traffic lights. A1 south at Stirling Corner, 10-minute queues. And Upney Lane, an accident closure from Barking Hospital to Meadow Road, continues through Barking with a diversion for Bus Route 62. M11 south, 15 minutes before North Circular. M4 onto the elevated section, 20 minutes haze to Brentford. And District and Piccadilly Line, trains not stopping west at Barons Court. So this is due to engineering works. You will need to make alternate arrangements. And that's the latest traffic and travel.
1: Ever get giddy renewing your car insurance? Fantasize about finance offers or paying your service bill? Probably not. After all, the best bit about driving a BMW is driving it. So leave the admin and skip to the best bit. Choose a new BMW 1 Series or 2 Series Grand Coupe by the 30th of September to enjoy a year's insurance, 3 years servicing, plus 2.9% APR representative. Search BMW, skip to the best bit. BMW UK Limited is a credit broker, not a lender. BMW Finance, T's and C's apply. Insurance age restrictions and exclusions apply. Whew, that's the admin over with.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड।
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02082 3444-24-hour line.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
5: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
9: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at quality food stores.
10: Discover Malta and Gozo with a Twin Centre Island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
1: Life doesn't always send a warning. A family matter, a property issue, an immigration concern, or a business dispute. When things feel complicated, Rack Law solicitors bring clarity, care, and trusted legal support. From family, property, and immigration to corporate law, your matters, our expertise. Call Rack Law solicitors on 0203-345-2000 or visit racklaw.co.uk.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271

0: हैं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
3: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना।
4: Disha Rice, now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Sameer Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha Rice, come down and

0: फूड कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
2: High appreciation
3: In Dubai
4: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals The Prince of Ghazal The youngest ghazal maestro Ranjit Rajwara Performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre Book your tickets now at harrowarts.com Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network. You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
4: sonatours.co.uk. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
5: Hello, London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers. Also at Belgrave Road, Leicester.
6: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
7: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। Backstage Siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of Bhajan Jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek Sham Soulful Music, Devotion aur Energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 Our line.
7: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.

0: रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर।
1: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
2: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
3: शाम चलने लगे दिल मच
2: विद द लेजेंडरी अनूप चलोटा ऑन संडे 30th ऑगस्ट एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ड। डोर्स ओपन 5 PM, शो स्टार्ट्स 6 PM, टिकट स्टार्ट्स फ्रॉम £40। बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk। रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
4: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
0: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
4: सच?
0: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
5: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड।
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
7: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
8: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Like a Gold.
9: दूर से आए हैं।
10: अरे सुन भैया सुन, जरा दिल लगा के सुन। हाँ।

गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में, मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो। लाइका रेडियो नेटवर्क पर पुराने गीतों का खजाना। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब की ओर से पहले धन्यवाद कहूँ काजल को। शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग।

0: डायरी खुल गई है और कुछ लाइनें भाई आपको समर्पित करना चाहता हूँ प्रोग्राम को शुरू करते हुए। और वो लाइनें जो पहले भी आप सुन चुके होंगे, फिर एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। धरा यानी धरती, पूरी दुनिया भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.
0: पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: आई लव यू,
2: आई लव यू,
1: आई लव यू,
2: आई लव यू,
1: आई लव यू,
2: आई लव यू।

0: हो गया, लव यू हो गया भाई। ये आदान प्रदान उस उम्र में बहुत होता है, बाद में जाकर के लोग इसकी परिभाषा ही बदल लेते हैं। राइट, शुरुआत होती है बैक टू बैक संगीत से, और दो गीत हमने परोसे, आपको पसंद आए होंगे। पहला गीत, तुम अगर साथ देने का वादा करो, रवीश जी की बनाई धुन पर, आवाज़ महेंद्र कपूर की थी, एंड दैट वॉज टेकन फ्रॉम द 1967 फिल्म हमराज। और भाई उसके बाद हमराज और भी बनी फिल्में, तो एक टाइटल से कई कई बन जाती हैं। दूसरा गीत जो आपने सुना, ये हमने फिल्म अकलमंद से लिया था, अकलमंद, और ये गा रहे थे किशोर कुमार और एस जानकी। अब भाई पहले हम पाउंड रेट बताते हैं और याद दिलाते हैं आपको कि 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के प्रमुख समाचार। राइट नाउ लेट्स फाइंड आउट द पाउंड्स वैल्यू इन इंडियन रुपीस।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं आपको भाई, रेट अच्छा चल रहा है। अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत में तो नोट कीजिए, टुडे दे आर गिविंग 128.6 इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड, 128.60 रुपये का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके की किसी भी ब्रांच में जाकर के वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन यू कैन ट्रांसफर, और यू कैन ट्रांसफर वाया यूजिंग द योनो SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Like a gold.
3: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
4: Goodbye.
3: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.

0: स्वर्गीय मुकेश जी का दर्द भरा स्वर और भाई गीत की शब्दावली भी ऐसी है।
1: जुबान पे दर्द,
0: आज बृहस्पतिवार है, हमारे श्रोताओं की ये इच्छा रहती है कि कुछ एक दर्द भरे गीत आज के प्रोग्राम की शोभा बने। बाहर आने से पहले खिजां चली आई।

0: मर्यादा फिल्म से लिया था हमने ये गीत, और भाई इस गीत को सुनवाने के बाद याद दिला दें आपको, हमसे थोड़ी देर बाद आज के प्रमुख समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Raika Radio Network. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक हिस्टोरिकल न्यूक्लियर समझौते की खबर आ रही है। समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से खाड़ी का ये देश अपना नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम डेवलप करेगा। अमेरिकी ऊर्जा डिपार्टमेंट के अनुसार ये शांतिपूर्ण न्यूक्लियर सहयोग समझौता है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर काम करने का मौका मिलेगा। समझौते का पूरा ब्यौरा अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में इसके तहत सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की इजाज़त मिल सकती है। भारत में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। भाई पेपर लीक का मामला जो है वो इतना व्यापक रूप से फैला हुआ है और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी में से ये खबर आ रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने कहा है कि मैंने आज सोनम वांगचुक से कई बार बात की, उन्होंने सभी प्रदर्शन करने वालों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और इस प्रदर्शन को सही तरीके से करें। इस देश में पहले हुए प्रदर्शनों में सत्ताधारी दल की ओर से कुछ असामाजिक तत्वों की घुसपैठ कराएगी और फिर दोष आंदोलन पर मढ़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक कुछ मेट्रो स्टेशंस वहां बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरी स्टेशंस पर इंटरचेंज लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के इल्जामों का जवाब दिया है। जेपी नड्डा, आपने जम्मू कश्मीर में एसएसबी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का जिक्र करके सही मुद्दा उठाया है, लेकिन उसकी तारीख गलत बता दी है। ये मामला 2022 का था। भाई पेपर लीक ये जो बड़े बड़े अधिकारियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं तो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके उसमें हिस्सा लेते हैं, और जब पेपर लीक के कारण अगर एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाता है तो उनकी मेहनत, उनका समय वो बेकार होता है। उसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी कांग्रेस जनता पार्टी की हिमायत में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जनता का आंदोलन है, न्याय और जवाबदेही की मांग के लिए हम सभी को एकजुट होकर इसका साथ देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विश्वास दिलाया है कि पेपर लीक करने वाले अपराधियों के खिलाफ डेफिनेटली सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन साहब कुछ लोग अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने खासकर अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में उतर आई है, लेकिन उनके इस्तीफे से कम किसी प्रोटेस्टर को कोई समझौता स्वीकार नहीं करना चाहिए। मशहूर एक्टर कमल हासन ने भी जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी और उसके हिमायतों की भावुक अपील की है। और भी बहुत लोग समर्थन में आ रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के आंदोलन पर भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर बल्लेबाज शिखर धवन भी अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं, उनके सपनों और उनकी आकांक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल वक्त में धैर्य बनाए रखना और देश की संस्थाओं और सरकार पर भी भरोसा रखना उतना ही अहम है। यानी शिखर धवन दोनों तरफ संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर रिएक्ट किया है। युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ये संकल्प भी उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ तुरंत सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इस बात का प्रतिबिंब है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

अनूप जलोटा की आवाज से शुरू होता है ये गीत, लता जी पूरा करती हैं। प्यार को सलाम, इस उद्गार को सलाम, इस उम्र को सलाम, इस जज्बे को सलाम।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: और भाइयों, अभी खबरों में एक खबर जो छूट गई थी लेकिन अभी वो पूरी नहीं आई है। मोहम्मद बशीर, लेटेस्ट कमिटेड जिहादिस्ट जिसने डिफेंस बेस पर अटैक करने की प्लानिंग की थी, उसको सज़ा सुनाई जा रही है। आज अभी कोर्ट की कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है, जैसे ही निर्णय या फैसला आएगा, नतीजा आएगा, वो भी हम अपनी ब्रॉडकास्ट में शामिल करेंगे या मुख्य खबरों में जो हर घंटे अंग्रेजी के समाचार आते हैं उनमें उसकी खबर आने की संभावना है।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel, आप जानते हैं भाई, वो याद दिला रहे हैं आपको कि दुबई यात्रा पर लेकर के जो बातें चल रही थी अब वो हटा दी गई, यानी अब आप दुबई का सफ़र कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ विजिट। साउथॉल ट्रेवल इज़ प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज़ लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स। उनका फ़ोन नंबर है 0208-574-8410 and they are at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Ye hai Leica Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu Ayurved, that fits your life.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Dad, Dad, Dad!
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale, bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
1: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
3: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch. एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड.
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
7: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
8: Search is changing.
9: Customers aren't just using Google anymore.
8: They're asking AI.
9: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
8: One business, one recommendation.
9: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
8: Will your business be the answer?
9: Or the one that got left behind?
8: The future of search has already started.
9: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
8: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T&Cs apply.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड का मनोरंजन प्रोग्राम है। ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं। वक्त हो रहा है चिंतन का, पर चिंतन से पहले भाई मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के संदेश आ रहे हैं और वह हैं सब आप सब की बदौलत। वेल भाई, अभी अभी भारत से खबर आई है कि मुझे वहाँ एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सृजन और सेवाओं के लिए, हिंदी की सेवाओं के लिए, हिंदी भाषा की विदेशों में भाई सेवाओं के लिए विशेष हिंदी सेवी सम्मान, ये एक अवार्ड है जिसमें 1,00,000 रुपए की राशि और एक शील्ड जो है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त ने मेरी तरफ से स्टेज पर जाकर एक्सेप्ट की है। भाई सम्मान हिंदी भाषा का है, सम्मान साहित्य का है और सम्मान सुनने वालों का है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू चौधरी साहब, मीना जी, गीता जी और नीलम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक ये समाचार पहुंच गया है और आपके बधाई संदेश आ रहे हैं। आइए आज के चिंतन की ओर रुख करें। आज के चिंतन के लिए ब्लैकपूल से अतुल जैन ने भिजवाया है आलेख और याद दिलाया है, शर्मा जी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कहते मेरी जिंदगी में भी कुछ क्षण ऐसे आए थे। हर व्यक्ति जो ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो कभी कभी भाई उसके जहां बहुत सारे समर्थक होते हैं तो 2-4 ऐसे लोग भी होते हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं, नीचे गिराने का काम करते हैं विभिन्न माध्यमों से। ऐसे ही एक आदमी का भरा पूरा फलता फूलता कारोबार तबाह हो गया। उसे लगा कि अब वो फिर से नहीं उठ पाएगा। निराशा की घड़ी में जब व्यक्ति को आसपास इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आता है, ऐसे में एक नेगेटिविटी का जाल सा बुनता चला जाता है। व्यक्ति सोचता है मेरा तो जीना ही बेकार है, कैसे मैं एक कर्जदार के रूप में लोगों की निगाहों का सामना करूंगा, गली से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, सड़कों पर बाजारों में कहीं भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा। और ऐसे में व्यक्ति आत्महत्या की सोचता है, पर कैसे करे? आत्महत्या भाई बहुत बड़ा पाप होता है, सब जानते हैं, लेकिन उसके सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तभी उसे विचार आया कि उसके गुरु ने उसे एक बार एक लिफाफा दिया था और यह कहा था कि इसको तभी खोलना जब दुनिया में तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, जीने की कोई सूरत ना दिखे, जब तुम निराशा के घनघोर बादलों में अपने आप को भटकता हुआ पाओ तो ये लिफाफा खोलना, इसमें तुम्हें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। उसने सोचा इससे ज्यादा उपयुक्त समय कोई और हो नहीं सकता, मुझे जिंदा रहने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही दुनिया से चला गया तो ये कागज़ ये लिफाफा बंद का बंद रह जाएगा, मुझे देख लेना चाहिए कि ऐसा क्या लिख कर दिया था महात्मा जी ने और कहा था कि इसको घोर निराशा के पलों में क्षणों में खोलना और पढ़ना। उसने आत्महत्या से पहले घर जाकर वो लिफाफा ढूंढा, खोला तो उसमें लिखा था ये वक्त भी नहीं रहेगा। जब अच्छा वक्त गुजर गया, जब वो सुहाने दिन नहीं रहे, तो ये निराशाजनक पल भी खत्म हो जाएंगे। बड़ी अच्छी तरह से समझा कर लिखा गया था। कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा। याद रखिए बहनों भाइयों, कितने भी निराशा के क्षण आपकी जिंदगी में आए, कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा, कांटों के ऊपर चलने वाले फूलों पर भी हक है तेरा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, थोड़ा इंतजार करो, देखना बहारें फिर भी आएंगी।

रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, भरोसा रखिए। वह उस व्यक्ति ने यह नोट पढ़ा और इरादा बदल लिया। जिंदगी में बदलाव आया, बदलाव आता है।

0: थॉट फॉर द डे, आज का विचार जिसके लिए आलेख ब्लैकपूल से अतुल जैन ने भिजवाया था, धन्यवाद अतुल जी। जो गीत हमने सुनवाया दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म सोने की चिड़िया, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें शामिल थी इस गीत में। और बहना भाइयों, इसके साथ ही बधाई संदेशों का जो भाई क्या कहते हैं दौर शुरू हो गया है, मैं एक बार फिर से बता दूं किस लिए बधाइयाँ मिल रही हैं। मुझे सूचना तो मिल गई थी लेकिन मैं जल्दी में यात्रा नहीं कर सकता था। आज 23 जुलाई को हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति की अकादमी द्वारा आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में मुझे विशेष हिंदी सेवी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा अपने हाथों से उन्होंने इनाम दिया, वो ये सम्मान दिया जिसे मेरे छोटे भाई और हरविंदर मलिक ने मेरी गैरहाजिरी में स्वीकार किया। इसके लिए मैं रवि शर्मा लाइका गोल्ड रेडियो लंदन से लाइव प्रसारण में माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी और हरियाणा साहित्य संस्कृति अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सैनी साहब का, हरविंदर मलिक का और एक और हमारे मित्र दिनेश शर्मा जी का और वही हरियाणा साहित्य अकादमी का भी बहुत बहुत आभार। आइए अब चिंतन को समेटते हैं और अपने मूल रंग मनोरंजन की ओर लौटते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं भाई, सही मौका है पैसे भिजवाने का। भारत पैसे भिजवाना चाहें तो रेट नोट कर लीजिए। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 129.11 इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 371.04, श्रीलंकन 449.26। क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ भारतीय पैसे का रेट बताना चाहता हूँ। इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके वाले दे रहे हैं 128.60 फॉर वन पाउंड, और यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। ध्यान रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.

0: जो कुछ होया रहा तेरे कारण होया। मैं तो कहनी हाँ छड़ो की रखिया सच्ची गल्लां च। भाई गीत सुनवाते हुए जी चाहता है क्योंकि वो भारत में अवार्ड की घोषणा हुई। वैसे घोषणा तो पहले हो गई थी और उन्होंने इस इनाम के साथ 1,00,000 रुपए की राशि भी मेरे अकाउंट में डाल दी है और बहुत सुंदर शील्ड जो है तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। अभी हरविंदर मलिक हमारे छोटे भाई हैं मेरे, बहुत बड़े कलाकार हैं वो भी, तो उन्होंने रोहतक में फिल्म सिटी है तो मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी ने अपने हाथों से वो अवार्ड दिया है, उनको उन्होंने मेरी ओर से स्वीकार किया। तो भाई उस बधाई के साथ साथ अब आप भी बधाई के पात्र बनिए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए 2 टिकट्स किस चीज के, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद SKLPC UK नॉर्थोल्ट में, और वहां पर भाई बैक स्टेज सिबलिंग द पाइनियर्स ऑफ भजन जैमिंग आर कमिंग। दे आर आई फ्रॉम इंडिया फॉर देयर फर्स्ट एवर UK परफॉर्मेंस। कब हो रही है, कहाँ हो रही है, नोट कर लीजिए। टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 9th एंड सैटरडे 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC इंडिया गार्डन्स, वेस्ट एंड रोड, नॉर्थ होल्ट। मेरे ख्याल है बहुत सारे इवेंट वहाँ होते रहते हैं और आप सब जानते हैं कहाँ है, A40 के साथ आई थिंक अपोजिट CNL कंट्री क्लब के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा उनका भाई वो कैंपस है, वो वेन्यू है और वहाँ पर हो रहा है भजन जैमिंग। और भाई आप अगर उसके 2 टिकट्स जीतना चाहते हैं तो सेंड इन द वर्ड भजन, भजन लिख करके मैं हमारे जो कंपटीशन लाइन का नंबर है 07424232323 वहाँ भेजिए, भजन लिखिएगा और उसके बाद भजन तो कैपिटल में लिख दीजिएगा, फिर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिए। तो भाई इसी प्रोग्राम में हम ऐलान करेंगे आगे चल करके कि कौन है विनर, लेकिन इफ़ यू डोंट विन डोंट वरी, यू परचेज टिकट्स फ्रॉम SKL लिखना मत भूलिए। तो भाई इसी प्रोग्राम में हम ऐलान करेंगे आगे चल करके कि कौन है विनर, लेकिन इफ़ यू डोंट विन डोंट वरी, यू परचेज टिकट्स फ्रॉम SKLPC.com/BSS। टिकट्स आर प्राइज्ड फ्रॉम 25 pounds। दीज टिकट्स आर वैलिड फॉर फ्राइडे 9th अक्टूबर। ध्यान रखिएगा इस कॉम्पिटिशन में जो टिकट्स जीतेंगे आप वो 9 अक्टूबर के होंगे एंड विनर्स की टिकट्स जो है दैट विल बी ईमेल्ड अक्रॉस, सो प्लीज प्रोवाइड वैलिड ईमेल एड्रेस TNC अप्लाई। तो भाई आज ये कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है, भजन लिख करके कैपिटल में, फिर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस देना मत भूलिएगा क्योंकि टिकट ईमेल एड्रेस पर भेजे जाएंगे। ऑल द बेस्ट। बस बहुत निकली।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

आशा भोसले और अमित कुमार को सुनिए, और साथ साथ भाई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। सेंड इन भजन, नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस 07424232323 पर।

0: फिर यह दिला दुबई कंपटीशन शुरू हो चुका है और आप अपनी एंट्री करा सकते हैं 07424-2323 पर। आपको सिर्फ भजन लिखकर भेजना है, भजन जैमिंग के कार्यक्रम के दो टिकट्स जो नॉर्थ होल्ट में हो रहा है, तो वहाँ के दो टिकट्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी भेजना है, भूलिएगा नहीं। और जैसे ही मिलेगा आपकी एंट्री हो जाएगी और नतीजा भी जल्दी ही निकलने वाला है। इसी बीच एक और संदेश के लायक, रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर। A student pre-show takes place between 5 and 5:45 p.m. लेकिन जो मेन इवेंट है वो 6:15 बजे शुरू होगा, रात 9:30 बजे तक। शानदार प्रदर्शन क्रिएटेड बाय सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन पालन MBE एंड फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल। और इसके अलावा भाई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन ब्रिंग्स द रामायण टू लाइफ विद अवर चैप्टर्स, a bespoke 7-song soundtrack and a full international cast. Tickets ke liye www.diwalistory.com वहाँ आप विजिट कर सकते हैं, तो भूलिएगा नहीं। ये शानदार कार्यक्रम जो है हो रहा है 27 सितंबर को वेम्बली अरीना में, वेम्बली अरीना। तो साहब ये सूचनाएं साथ साथ बताते चलेंगे और कंपटीशन में आपकी एंट्रीज को संभालते चलेंगे, विनर का नाम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Gold. Leica Extra Podcast Update.
4: और भाई लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 25 लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर, ये है टाइटल। कैच दिस एपिक कन्वर्सेशन विद डोनी ब्रेस्को, बाली ब्रह्म भट्ट, अनिका रूबी रजा एंड रेडियो वाली एंड अनीसा नासिर भाई, इन सब से आप इनके रेडियो इतिहास के बारे में जानकारी ले सकेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो ज़रूर देखिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल travelhub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: travelhub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 0192322727274। बुक योर टेबल टुडे।
7: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
9: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस गजल्स, द प्रिंस ऑफ गजल, द यंगेस्ट गजल मेस्ट्रो रंजीत रजवाड़ा, performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027 book before the end of July and get 600 off call sonatours on 0208 951 0111
3: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan
4: Like a Goal लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइक अ गोल्ड.com पे

0: years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
1: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
3: कल महान गायक कलाकार मुकेश जी की जयंती थी. दिन भर भाई उनकी चर्चा हुई, उनकी आवाज़, उनका मधुर कंठ जो है गूंजता रहा कार्यक्रमों में. ये गीत उनकी आवाज़ में गंभीर नहीं है, चुलबुला है, थोड़ा

0: सूरत आपकी।
1: भाई हमारे श्रोता याद दिला रहे हैं कि आज बृहस्पतिवार है शर्मा जी, ये झूमने गाने गिरने पड़ने बिना पिए ही डगमगाने वाले ये गीत तो आप बाकी दिनों में भी सुनवाते हैं, आज तो हमें दर्द भरे गीतों का इंतजार है और उन आँखों की अभिव्यक्ति जो बिछी रहती है किसी प्रियतम के आगमन में। भाई उन यादों का जिक्र, उन आहों का जिक्र, आंसुओं की कहानी, वो नैनों से बरसता खारा पानी, वो सुनवाइए ना। ठीक है भाई, ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। एंजॉय कीजिए, खबरों के उस पर हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

प्रोग्राम के अंतिम दौर में स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका गोल्ड, लाइका रेडियो नेटवर्क पर। ये मनोरंजन का तीसरा और अंतिम घंटा। माय नेम इज रवि शर्मा। आई विश यू अ ब्रिलियंट आफ्टरनून टुडे।

बैक टू बैक संगीत में एक गीत श्रद्धांजलि स्वरूप शिव बटालवी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज भाई उनकी जयंती है, बड़ा पिंड 1936 बॉर्न। गंभीर स्वर जगजीत सिंह जी का।

0: मैनू तेरा शबाब ले बैठा। भैये शिव बटालवी की रचना थी और जगजीत सिंह जी का स्वर था, इससे बढ़िया संयोग हो नहीं सकता। लेकिन दर्द की अभिव्यक्ति, भाई शिव बटालवी तो दर्द के कवि हैं। और आपको बता दें कि उनकी डेथ 1973 में हो गई थी, मगर उनके गीत लिखे हुए, उनकी रचनाएं जिंदा हैं। शिव बटालवी को श्रद्धांजलि स्वरूप, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। 1936 में बड़ा पिंड जगह का नाम है जहां उनका जन्म हुआ था। और भाई पंजाब में ये कवि आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, पर के पूरे भारत में पंजाबी समझने वाले इनका सम्मान करते हैं। आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम भी शामिल हैं, सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में जिनका भाई क्या कहें कि सम्मान है। और बड़े गर्व से भारत में चंद्रशेखर आज़ाद अगर आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। भाई स्वतंत्रता सेनानी, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शहादत स्वीकार की। चंद्रशेखर तिवारी थे, लेकिन आज़ाद उन्होंने अपना उपनाम रखा क्योंकि वो आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, ये उनका कहना था। ১৯০৬ में जन्मे थे चंद्रशेखर आज़ाद। आज ही के दिन जन्मे थे संगीतकार हिमेश रेशमिया 1973 में। और साहब एक और स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक 1856 में जन्मे थे, आज ही के दिन 23 जुलाई को। तो भाई आपके घर परिवार में भी अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं स्वीकार कीजिएगा। और साहब याद दिला दूं कि वो कंपटीशन चल रहा है, भजन जैमिंग जो हो रही है उसके लिए अब कंपटीशन में 2 टिकट्स दिए जाएंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ भजन लिखिए और उसके बाद आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। नंबर है 07424232323, जहां आपको ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है। भजन ये लिखना है, फिर आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। और बहनों भाइयों जहां भेजना है वो हमारे स्टूडियो का कंपटीशन नंबर है 07424232323। ऑल द बेस्ट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. फिर दोहरा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि पैसे भारत भेजना चाहें तो भाई मौके का फायदा उठाइए, अच्छा रेट है, सही समय है। Today they are giving for £1, they are giving 128.6 रुपीज, 128 रुपए और 60 पैसे एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
2: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
5: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
6: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
7: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
8: आर्टिस्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह की कलाकार हैं अदाकारा हेमा मालिनी। हेमा जी ने भाई अपने अभिनय की दक्षता जो है साबित की है कई तरह के रोल करके, कहीं चुलबुली चटपटी सी वही भाषा बोलने वाली, कहीं शोले में अलग लड़की और कहीं बहुत गंभीर जॉनी मेरा नाम में वो दुल्हन एक बड़ी मजबूर सी लड़की है। मुंबई में पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि धर्म जी की आपसे जो आखिरी बात थी, उन्होंने आखिरी शब्द क्या थे आपके लिए उनके, तो हेमा जी ने कहा था कि उन्होंने मुझसे कहा था परिवार को जोड़े रखना, सब देखना। सनी और बॉबी, हेमा जी कहती है बहुत अच्छे लड़के हैं, मेरा सारा परिवार एकजुट है धर्म जी की खुशी के लिए। भाई धर्म जी के साथ, वैसे मैं आपको बता दूं कि हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में हुआ था और धर्म जी के साथ 2 मई 1980 को उनका विवाह हुआ। और साहब उसके बाद कितनी फिल्में उनकी पहले भी साथ साथ आ चुकी थी और उनकी जोड़ी बड़ी कामयाब जोड़ी फिल्मी दुनिया में मानी जाती है। लेकिन अब आएगी ज़रूर चिट्ठी मेरे नाम की, धर्म जी की ओर से। ये विश्वास उनका आज भी बना हुआ है कि धर्म यानी धर्मेंद्र जी दुनिया से चले गए हैं मगर उनके दिल से नहीं। आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और बहनों भाइयों, हेमा हमारे लिए सप्ताह की आर्टिस्ट हैं। उनके गीत तो आप सप्ताह भर सुनेंगे, अभी वीकेंड तक तो कई गीत आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक गीत सुनवाते हैं आपको जो याद दिलाएगा महमूद साहब की।

0: सज रहे अरे हाँ
1: महान हास्य अभिनेता यानी कॉमेडियन महमूद अली की आज पुण्यतिथि है। 23 जुलाई 2004 में उनकी डेथ हुई थी। शौकत हुसैन साहब याद दिला रहे हैं। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूं, मंदिर में रख दूं। पंडे ने देखा, वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा, बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई, दी लाख दुहाई, वो एक न माना, पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया, सड़कों पर बेचा, गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला, कचरे में डाला, फिर बारिश आई, अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की, मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा, मैं वापस भागा। फिर बच्चे को उठाया, गले से यूं लगाया।
2: ये महमूद की आवाज है, महमूद गाते भी थे।
1: आगे क्या बोलूं यारा, मैं पापी दिल से हारा।
2: मोहम्मद रफ़ी और महमूद साहब की आवाज़ों में ये गीत फिल्म कुंवारा बाप से लिया गया था। भाई आज महमूद साहब की पुण्यतिथि है।

0: उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए भाई और शौकत भाई का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। याद दिलाते हैं आपको कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी टेकिंग प्लेस एट द ओवो अरीना वेम्बली ऑन सेप्टेम्बर संडे 27 सेप्टेम्बर संडे। विजिट AXS और Wembley फॉर टिकेट्स।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Laika Gold.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: अभी तक अगर आपने भाई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं फिर याद दिला दूं आपको कि भजन जैमिंग के दो टिकट्स हम दे रहे हैं। भजन जैमिंग्स के कार्यक्रम में जाने के लिए आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो सिर्फ इतना करना है कि भजन लिख करके हमारे जो कंपटीशन लाइन का नंबर है उस पर भेजिए। भजन लिखिएगा फिर अपना नाम लिखिएगा। भजन BHAJAN भजन या डबल जे कर सकते हैं, भजन हो जाएगा नहीं, भजन लिखिएगा जैसे भी, लेकिन अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा क्योंकि टिकट्स आपको ईमेल के माध्यम से भिजवाए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, नतीजा निकलने वाला है।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।
1: नो।

0: तेरी आंखों की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम।
1: दिल तेरा है,
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: और साउथ ऑल ट्रेवल का वो पैगाम आपके नाम भाई फिर दोहरा दूं, साउथ ऑल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Like a Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलीडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com. T's and C's apply.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: और बहनों भाइयों, कार्यक्रम समापन से पहले हमें विनर का नाम घोषित करना है। भजन जैमिंग के दो टिकट दिए जाने हैं और वो दो टिकट किसको जा रहे हैं? रेडियो के नजदीक आ जाइए।

0: जीने मरने का मौसम आया भाई, अनाउंस करने का मौसम आया कि कौन है विनर। मैं पहले आपको बता दें कि किस चीज की टिकट से लाइका रेडियो नेटवर्क टीम अप विद SKLPC UK नॉर्थॉर्ट फॉर बैक स्टेज शिवलिंग्स द पाइनियर्स ऑफ भजन जैमिंग दे आर कमिंग एंड अराइव फ्रॉम इंडिया फॉर देयर फर्स्ट एवर UK परफॉर्मेंस। It takes place on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC. लेकिन आपको बता दें जो टिकट हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं जो आज के इस प्रोग्राम में, वो 9 अक्टूबर के हैं।
1: क्या हो गया है?
0: आपको ईमेल के माध्यम से मिलेंगे।
2: कितनी रुते?
0: आप बहुत सारे लोगों ने भजन लिख के भेजा। कंपटीशन की शर्त ये थी कि आप भजन लिखिएगा, भजन नहीं बनाना, भजन लिखना है BHAJAN। बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जो विनर हैं जो जाएंगे 9 तारीख के कार्यक्रम में भजन जैमिंग का आनंद लेने के लिए, द विनर इज फॉर द 2 टिकेट्स, इट्स बीमा श्रेष्ठा। बीमा श्रेष्ठा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यू आर द विनर, 2 टिकट्स आर ऑन द वे फॉर यू टू एंजॉय द भजन जैमिंग ऑन 9th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थॉर्ट।
3: ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
5: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और आपको मैं रेट्स बता दूं भाई, फॉर £1 एट दिस मोमेंट दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.01 रुपीज, पाकिस्तानी 370.97, श्रीलंकन रुपए 448.59, बांग्लादेशी टकाज 164.86 एंड अफगानी 88.02।
5: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And the gold is trading at the rate of 98.41 pounds per gram.
5: Gold Race was sponsored by

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Honslow. Ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
4: Bikaner wala. Parampara bhi.
5: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English but louder.
7: Four beers, please, garçon.
6: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
9: और बहनों भाइयों, अब कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है. लेकिन स्टूडियो छोड़ने से पहले एक बार फिर दोहरा दो भाई धन्यवाद के शब्द, क्योंकि भारत में शुभचिंतक सुन रहे हैं. आपको याद दिलाऊं कि आज सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी की जयंती के पावन अवसर पर दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रोहतक और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति के अकादमी द्वारा आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में मुझे विशेष हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है. और ये किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों से. और इस अवार्ड को मेरे अनुज हरविंदर मलिक ने मेरी अनुपस्थिति में स्वीकार किया है. उसके लिए मैं रवि शर्मा यहाँ लंदन से लाइव रेडियो पर लाइका गोल्ड रेडियो लंदन से माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का भी और हरविंदर मलिक, दिनेश शर्मा, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ

नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दिया आपने जिंदगानी। और भानु भाई इसके साथ ही रवि शर्मा को अभी इजाजत दीजिए। हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a gold.
0: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Gold Afternoons.
4: Gold Afternoons.
3: Proudly sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट. दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
6: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
11: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
10: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
11: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
10: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
11: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
10: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
11: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
12: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
13: Lights on, shutters up, staff ready.
12: But today's customers don't start on the high street.
13: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
12: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
13: They walk into your competitors.
12: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
13: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T's and C's apply.

0: आशा भोसले इन सौदागर फिल्म.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड. रेमिनिस दोज क्लासिक्स.
0: दैट वाज सौदागर 1973. आशा भोसले जी ब्यूटिफुली संग. सजना है मुझे सजना के लिए. यह है लता मंगेशकर जी. फिल्म है अभिलाषा. 1968 की फिल्म है. एंड स्टिल गोइंग एवरग्रीन ऑन लाइक अ गोल्ड. आर डी बर्मन का संगीत है. मजरू सुल्तानपुरी की.

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.84 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साफो ट्रेवल. At all protected.

0: किसी के कितने लोगों को पूछा इसका मीनिंग क्या है, और कुछ लोगों ने बोला कि इट मींस आप आ रहे हो पर्ल हंटिंग के लिए. ओ पर्ल हंटिंग जो होता है इट्स ऑन अ बीच, फिशरमैन की लैंग्वेज में. सो मुथु कुलिथाई दैट इज पर्ल हंटिंग.
1: दो दिलों की.
0: महमूद साहब एक रोते हुए बच्चे को चुप करना चाहते थे तो बोलते कि मैं लोरी सुनाता हूँ, लेकिन वो ज्यादा रोने लगा. इतना रोता है, क्या होता है सुनते रहिए.
1: फूफा के भतीजे लोरी
2: लोरी लोरी

0: मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव फरूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरीप न थी समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा थोबड़ा तेरा।
1: Hope you enjoyed this particular song.
2: Feel good classics all day. Like a gold.
1: And this is one of those beautiful numbers jisme music director the Manorida unke partner ke sath.

कितना फिलोसॉफिकल गाना है, इसमें कितना फैक्ट्स है। जितना लिरिक्स सुनो उतना यू क्वाइट नॉड योर हेड एंड एग्री विद इट। एनीवे, होप यू एंजॉयड द

0: Boys, Bali Brumba.
1: Yes, yes, yes. Mahum Bali Brumbat on Like a Gold with Gold Afternoons. How are you doing? I hope you're enjoying the drive. I'm talking to Kiru Dave. That's right. Yes, he's driving. And Rekha is listening. मैंने सोचा कि दे वुड बी डूइंग सम वॉल्ट्स डांसिंग व्हेन आई प्लेड द फर्स्ट सॉन्ग, लेकिन वो नहीं हुआ. कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं. एनीवे, द सॉन्ग वाज डेडिकेटेड टू यू एंड द सेकंड सॉन्ग आई कुड इमेजिन माय ग्रैंडडॉटर सराया प्लेइंग द ड्रम्स विद दैट पर्टिकुलर सॉन्ग बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ हर अ बीट दैट शी प्लेज ऑन हर ड्रम किट. सो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट ये होने वाला है कि आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज हेमा मालिनी और मैंने एक गाना चुना है विच इज वेरी रेयर वन बट देन बड़ा प्यारा गाना है एंड दैट इज फ्रॉम फिल्म अभिनेत्री 1970 का गाना है. उसके अंदर सभी महिलाओं को मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आपको हेमा मालिनी जी को देखना है डूइंग अ वर्कआउट देन इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग दो मिनट चले जाते हैं गाने के, मतलब गाना है अबाउट 5.5-6 minutes का गाना है. 2 minutes के बाद शी स्टार्ट्स हर वर्कआउट एंड शी डज इट फॉर अबाउट 1 minute. वो आप देख लेंगे तो यू कैन कॉपी दैट वर्कआउट एंड बी फिट. ऑनेस्टली कहीं भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ये गाना देखना है. और ये गाने के अंदर शी इज इन द बिगिनिंग सिंगिंग विद रेन इन द बैकग्राउंड, घर के अंदर ही है एंड देन शी बाथटब भर के, इतना ब्यूटीफुल बाथटब भर के एकदम फोम वाला, एंड देन शी हैज अ लवली बाथ एंड देन अ शावर एंड देन द सॉन्ग कैरीज ऑन दैट वे, यू नो. बट आई थिंक It's about a woman that is in love because it says O Ghata Samri. Bada pyara gana hai, maine aapke liye chuna hai because our artist of the week is Hema Malini. And then aage jaate hue Kishore Kumar aur Asha Bhosle ka ek beautiful aankho aankho wala gana hai aur uske baad hum karenge Mukesh ji ka ek gana jo Mahmood sahab ke upar picturized hua tha. And then we shall end with Mahmood sahab ka gana hai Hum Kaale Hain To Kya Hua Dil Wale Hain. And then mujhe is स्टूडियो से हटा दिया जाएगा बिकॉज इट्स गोना बी सैंडी शाह हु विल कम टू द स्टूडियो एंड टेक ओवर फॉर ड्राइव टाइम एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. इट्स द 379th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स एंड इट्स गोना बी राजपतन फ्रॉम 4 to 7 विद हिज इनइमिटेबल स्टाइल.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can fetch you 128.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Like our gold.
4: Gold Afternoons is sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
5: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
6: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
5: So where do we find something like that now?
6: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
7: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
8: वॉटफुट में डिनर प्लान्स,
9: थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
11: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
12: Dreaming of paradise?
13: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
14: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
13: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
14: At all protected.
15: Recalculating. Family issue ahead. Property paperwork on the left. Immigration deadline approaching. Business dispute in 200 yards. When life takes an unexpected turn, let Rack Law Solicitors guide you with clear, trusted legal solutions. Family, property, immigration and corporate law handled with care and expertise. Call 0203-345-2000. Rack Law Solicitors. Your matters, our expertise.
16: Two businesses,
17: same town,
16: same service.
17: One appears on page one of Google,
16: the other doesn't.
17: Guess which one gets the customer?
16: The truth is brutal.
17: The first page of Google gets the business.
16: Everyone else gets what's left.
17: So here's the real question:
16: when your customers search for what you sell, do they find you?
17: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
16: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
18: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio Partner. Like

0: शंकर जयकिशन ने आंखों आंखों में 1972 में ये म्यूजिक दिया था, हसरत जयपुरी की लिरिक्स। लेकिन सेम सिंगर्स किशोर कुमार और आशा भोसले, सेम टाइटल आंखों आंखों में, वो कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया आनंद बख्शी की लिरिक्स के साथ। वो सुनिए, वाओ व्हाट अ सॉन्ग दैट इज।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ji haan, same title, aankhon aankhon mein. Lekin ye film Mahal ka gana Kalyan ji Anand ji ne jo compose kiya. Same singers, Asha Bhosle, Kishore Kumar, आनंद बख्शी की लिरिक्स आंखों आंखों में।

0: कल्याण जी आनंद जी ने क्या गाना बनाया, एंड दैट्स प्यासे पंछी विच वॉज पिक्चराइज्ड ऑन महमूद साहब, एंड कमर जलालाबादी हैड रिटन द लिरिक्स ऑफ इट.
1: मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइकर रेडियो नेटवर्क.
2: हमें काले हैं.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड
1: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली एंड द नेदरलैंड्स स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल इंक्लूडिंग इंडियन मील्स ऑन टूर वेल प्लान्ड कंफर्टेबल ट्रस्टेड दैट्स द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस कॉल 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
2: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
3: बीकानेर वाला परंपरा भी
4: फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड गैंसिल इल्फोर्ड IG26HA कॉल 07555-506015.
5: हेलो लंदन, द वेट इज ओवर. कल्याण ज्वेलर्स इनवाइट्स यू टू द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ अ स्पेक्टेकुलर न्यू शोरूम. जॉइन अस ऑन ग्रीन स्ट्रीट अपटन पार्क दिस July 31st. कल्याण ज्वेलर्स ऑल्सो एट बेलग्रेव रोड लेस्टर.
6: This is Sandy Shah on Gold Drive.
7: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: झूठ बोला सैंडी शाह ने झूठ बोला
3: ऑन गोल्ड ड्राइव.
4: सो थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर एवरीवन हु इज टेकन पार्ट सो फार ऑन झूठ बोला. एंड सो इट्स योर लास्ट चांस. हैव अ गो इफ यू हैव नॉट हैड अ गो. इफ यू हैव नो आइडिया टेक अ गेस. बट इफ यू प्लीज डोंट लुक इट अप फर्स्ट. व्हाटएवर यू डू यू कैन चेक इट आफ्टर आई हैव गिवन यू द आंसर. एंड इफ यू हैव गॉट इट राइट यू आर गोना बी हैप्पी आंट यू. देयर यू गो. सो द टू स्टेटमेंट्स आर ऑस्ट्रेलिया इज एज वाइड एज द मून. And B, in summertime, human nails grow faster. What am I lying about?
3: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
5: मैं हूं अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: ये है Leica Gold 10:35 AM.
1: It is indeed, and the Leica Radio Network is the exclusive radio partner for Diwali Story. The musical that sold out the Royal Albert Hall and now arrives at the Over Wembley Arena on Sunday, the 27th of September. A student pre-show takes place between 5 PM and 5:45 PM. The main event is from 6:15 till 9:30 PM. It's been created by the Sanatan Events founder Natin Palin, MBE, and features choreography from the Bollywood Dance School team. The English language production brings a reminder to life with 4 chapters, bespoke 7-song soundtrack, and a full international cast. If you're looking for tickets, go on to www.diwalistory.com.
2: This is Sandy Shah on Gold Drive.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Dad,
6: what's wrong, beta?
5: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
6: I will run down to the money exchange now.
5: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
6: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24-hour लाइन.
8: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
9: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
12: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores. राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kg, यानी कि 4x5 kg या 2x10 kg या 1x20 kg. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
13: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle and controversies.
14: You have to be really dedicated to be able to
15: become a
14: radio presenter. So you're giving sacrifices around you as well.
15: True.
14: Whether it's at home or whether it's family.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
3: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
4: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty, and total desi swad in char mazedar flavors.
3: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
5: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
6: Hello, London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
7: The Evening Show with Ashwini.
8: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
9: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: आज रात लंदन में हल्के फुल्के बादल, हल्की फुल्की हवा, 18 डिग्री टेम्परेचर। कल मैक्सिमम 29 डिग्री, मिनिमम 15 डिग्री टेम्परेचर होगा लंदन में। आज रात मैनचेस्टर में क्लियर स्काई है तो 11 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, हल्की फुल्की हवा रहेगी। कल मैक्सिमम 22 डिग्री, मिनिमम 13 डिग्री एंड सनी इंटरवल्स।
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Ashwini.
1: जल्दी शाम ले चलिए हमें सुहाने रात की ओर। द इवनिंग शो विद अश्विनी में तैयार हो जाइए फॉर फैंटास्टिक मेलोडियस जर्नी। साथ में मना रहे हैं आप और हम थ्रिलिंग थर्सडे, यादों की बारात, इमोशन ऑफ द डे, गजल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली। लेकिन उसके पहले हो जाए दो बैक टू बैक गीत। वॉल्यूम अप करिए, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
0: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न फॉर द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
3: Travelhub,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Leica, the Leica radio network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड पहले आवर का आगाज हमने किया 90s और 80s के बच्चे खुश हो गए। 90s से हमने लिया था आशिकी फिल्म से जाने जिगर जाने मन, अनुराधा पौडवाल एंड कुमार सानू की आवाज में। एंड इसके बाद ओहो मतलब उफ वाला गाना था, दर्द फिल्म से, दर्द है तो उफ तो होगा दर्द फिल्म से आशा भोसले एंड किशोर कुमार की आवाज में लिया था वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स प्यार का दर्द है। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, हमारे सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स अराउंड द ग्लोब अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, तो थ्रिलिंग थर्सडे में आइए जी, स्वागत है आप सबका। पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना? आई नो आज फिर से जरा धूप, इतनी धूप नहीं थी लेकिन गर्मी ज़्यादा है, कोई ना बस 20s में आ गए वापस, कोई फिक्र ना। चलिए अभी अच्छा बिल्कुल बढ़िया सा माहौल होगा शाम 7 से 10 बजे तक, क्योंकि आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। तो हमेशा की तरह एक सवाल पूछने वाली हूँ मैं आप सबसे, क्या सवाल पूछा जाए या क्या किया जाए? ओके चलिए, तो देखिए हमारी ज़िंदगी में जो भी अपनी लाइफ है, जितनी भी अभी आपकी उम्र है, तो आपकी इस उम्र में आपको बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा लेके जो भी आप है, तो कोई ना कोई आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान होगा जो कंजूस होगा या कंजूस होगी, ओके स्टिंजी। अब क्या ही इनकी मंशा होती है इसके पीछे, हम तो नहीं जानते, है ना? तो भाई हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही 2-3 जान पहचान के लोग हैं, कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते उनके बारे में, लेकिन यस है। एंड मुझे ना सिर्फ ये एक बार समझना है कि अब एक तो ये सवाल कैसे पूछा जाए कि भाई आप इतने कंजूस क्यों हैं, क्या बहन आप इतनी कंजूस क्यों हैं, पूछ भी नहीं सकते, बट ये समझना ज़रूर चाहूँगी कि क्या वो चीज़ है जो इन्हें यू नो दूसरों के लिए खर्चा करने से बचाती है। अपने लिए खूब खर्चा करते हैं लेकिन दूसरों की बारी जब आती है तब जान पहचान हो, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी जान पहचान ना हो। चलिए बताइए, हमेशा की तरह एक लाइफ थियरी, बहुत सुंदर लाइफ थियरी लेके आई हूँ, थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में भी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी एंड 30 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:29, इट्स 29 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। हर रोज नियरली इस टाइम पे आप और हम बात करते हैं जिंदगी की किसी थियरी के बारे में। छोटी सी थियरी लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपको सोचने पे मजबूर करेगी ये थियरी, द पॉज थियरी। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे अपने लंदन शहर का। हमारे यहाँ पे टॉटन कोर्ट रोड स्टेशन जो है, ओके, टॉटनहैम कोर्ट रोड, ये जो स्टेशन है यहाँ पे, जैसे हम स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी सी LED स्क्रीन्स लगी हैं। और वो स्क्रीन्स जहाँ पे लगी है ना, वो इतनी ह्यूज और इतनी जायंट है, एक्चुअली जायंट ही है वो। तो वो स्क्रीन्स जहाँ पे लगी है वहाँ पे ना उन्होंने कुछ ऐसे पत्थरों के ऐसे बेंचेस बना रखे हैं कि आइए वहाँ पे बैठिए और उसे देखिए। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े इंसान तक, सब के सब जब भी स्टेशन से बाहर निकलते हैं वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे जो भी स्क्रीन पे चल रहा है उसे एंजॉय करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। कई लोग तो ज़मीन पे लेट जाते हैं क्योंकि ऊपर सीलिंग पे भी कुछ ना कुछ वीडियोस चलती रहती हैं इन स्क्रीन्स पे। लोग मुस्कुराते हैं, कुछ लोग बहुत गहराई से सोचने लगते हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे बस एक पीसफुल स्माइल होती है, कुछ लोग रिलैक्स होते हैं। तो ये देख के मुझे ध्यान में आया कि भाई ज़िंदगी में एक पॉज कितना ज़रूरी है ना हम सब के लिए। वो जो जायंट स्क्रीन्स है ना, वो आपको कह नहीं रही कि यहीं पे रुक जाओ, वो कह रही कि पॉज लो। आप जितनी दौड़ भाग कर रहे हो, जिस चीज़ के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो ना, करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, भागिए उनके पीछे, मेहनत करिए यार, ज़िंदगी है, एक ह्यूमन लाइफ मिली है, बिल्कुल कस के मेहनत करो और अपनी अपने गोल्स तक पहुँचो। लेकिन पॉज तो ले लो, रुक जाओ, कभी कभी ये ठहराव बहुत ज़रूरी है। और जब ये ठहराव आप ले लेते हैं ना, एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ में फिर आप निकल पड़ते हैं आगे की जर्नी के लिए। और ये ख्याल मुझे आया जब मैं खुद जाके वहाँ पे टॉटनहैम कोर्ट रोड स्टेशन पे जाके रुकी, जब मैंने जायंट स्क्रीन्स देखी, मैंने कहा अरे ये तो सचमुच ठहराव के लिए है, पॉज के लिए है। तो क्या आप भी जब ज़रूरी है तब पॉज ले रहे हैं या नहीं, या पॉज भी ले रहे हो कि नहीं, ये सवाल है। हाँ, मुझे आंसर मत बताइए, ये अपने आप के लिए आंसर। तो कैसी लगी ये मेरी बनाई हुई द पॉज थ्योरी, जरूर बताइएगा। एंड चलते हैं अगले गीत की तरफ।
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।
3: यादों

0: London at Breakfast and Drive. The Evening Show with Ashwini. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट TravelHubWorld.com. Start

0: 0808 574 8410.
1: ओह जी, सेकेंड आवर और आप और हम बढ़ रहे हैं इस म्यूजिकल जर्नी में आके। तो आज है थ्रिलिंग थर्सडे, क्या मेरी लिखी हुई कोई पोयम सुनना चाहेंगे? अगर मैक्सिमम हाँ आते हैं तो पक्का इस पोयम सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले दो बैक टू बैक गीत, वॉल्यूम अप रखिए। यू आर गोइंग टू लव दिस ट्रैक। सो दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
2: लाइक हर गो, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
4: ट्रैवल हब
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: लाइक
5: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. क्या फैंटास्टिक ट्रैक्स थे ना, मजा आ गया आप सबको. अनुराधा पौडवाल की आवाज में दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म से सुनाया पहला गीत एंड समुंदर फिल्म से. आहा, मतलब मैंने कहा था ना आपको पहले ही, उफ वाले गीत चलने वाले हैं आज. इट्स अ थ्रिलिंग थर्सडे. आप और हम मना रहे हैं शाम 7 से 10 बजे तक द इवनिंग शो विद अश्विनी आता है मंडे से लेके फ्राइडे तक. जो अभी समय बताया जी, वही 3 घंटे शाम 7 से 10. तो पोयम सुनना है आप सबको? बिल्कुल सुनाते हैं, सुनाते हैं. पहले पैसों की बात करते हैं.
1: Like a radio network. Money talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी एंड 30 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: अच्छा, एक प्रॉमिस करिए, ये पोएम सुनते सुनते आप सब मुस्कुराएंगे. हाँ हाँ, मैं रेडियो में से देख लूंगी आके आप लोग मुस्कुरा रहे हो कि नहीं. क्योंकि इस कविता का नाम, इस पोयम का नाम है मुस्कुरा गए. एंड शायद आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मुस्कुराते मुस्कुराते ही मैंने ये पोयम लिखी होगी. बिल्कुल वैसे ही हुआ था. सो कुछ इस तरह मुस्कुरा दिए हम, कुछ इस तरह मुस्कुरा दिए हम कि गम भी मुस्कुरा दिए. पहलू में अपने छुपा के दर्द को दवा बना गए. मुस्कुराने की अदा शायद पहले से थी हम में, मुस्कुराने की अदा शायद पहले से थी हम में. पछताओगी हंस के, कह दिया गम ने. हमने कहा सुनो ना, दोस्ती कर लो हमसे. मुस्कुराने की अदा सिखा देंगे कसम से. उफ, क्या दीवानापन तुम्हारा. लो चल दिए हम सफर पे. गलती हुई माफ करो, तुम रहो अपने चमन में. तुमसे जीतना आसान नहीं समझ लिया हमने, तुम्हें रुलाना आसान नहीं मान लिया हमने. इतना कह के गमों ने नापा अपना रास्ता, इतना कह के गमों ने नापा अपना रास्ता. क्योंकि जानता है गम, हमें तो बस मुस्कुराने से है वास्ता. कुछ इस तरह, कुछ इस तरह मुस्कुरा दिए हम कि गम भी मुस्कुरा दिए. पहलू में छुपा के अपने दर्द को दवा बना गए. सच्ची बताना, मुस्कुरा रहे थे आप लोग सब? अब जब मुझे इमोजीज आएंगे स्माइली वाले और आपका फीडबैक आएगा तब पता चलेगा ना. नेक्स्ट ट्रैक आप सब के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, सेहरा फिल्म से.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which? Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco car insurance and get your quote today. Club card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
2: डैड,
3: व्हाट्स रॉन्ग बेटा?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, balle balle. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Minar Jewelers, best overall business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
7: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
8: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:34, इट्स 34 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। हाँ जी, तो कल हमने किया था एक कॉम्पिटिशन, लेकिन आज अभी मेरे शो में ये कॉम्पिटिशन नहीं है। सो लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद सिफत इवेंट्स एंड सोल्जम लंदन फॉर अ नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा। इट्स टेकिंग प्लेस एट हैरो आर्ट सेंटर थर्सडे, यानी कि अगले गुरुवार को 30 जुलाई शाम 7 बजे। तो अगर आपने टिकट्स नहीं जीते तो कोई बात नहीं जी, टिकट्स प्राइस्ड हैं फ्रॉम 25 पाउंड्स। हमारे रेडियो का नाम ले लीजिए लाइका रेडियो, तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा जब आप टिकट्स ऑनलाइन बुक करते हैं। ज़रूर जाइएगा हैरो आर्ट्स सेंटर पे July 30th शाम 7 बजे। एंड अब ज़रा फटाफट इमोशन ऑफ द डे, थ्रिलिंग थर्सडे। सो ये गीत आप सबके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
3: पॉडकास्ट एपिसोड 25 आ चुका है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइका प्रेजेंटर्स की पूरी टीम आई है एंड लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर। अभी सबकी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। डॉनी ब्रास्को, बाली ब्रम्बर्ट, अनिका रूबी रजा रेडियो वाली एंड अनीसा नासिर, सब ने अपने अपने चैलेंजेस बताए हैं जब वो रेडियो प्रेजेंटर्स बने हैं। कहाँ किसकी लाइफ में क्या ग्राफ चलता रहा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, ज़रूर सुनिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग platforms.
4: Like Extra is here. The Evening Show with Ashwini.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
8: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
11: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
12: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 47 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। हमारे बड़े ही प्यारे लिसनर हैं बॉबी जी, जिनके कलीग हैं सुनील साहब, उनका है बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू सुनील जी, आपके कलीग बॉबी जी की तरफ से और हमारे लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से, मेरी तरफ से। भाई बर्थडे जो हैं बहुत स्पेशल रहते हैं हर इंसान के लिए, एंड वी विश यू एक्सेलेंस, कीप शाइनिंग, कीप एक्सेलिंग इन लाइफ। व्हेन इट कम्स टू बर्थडे, ऑब्वियसली आज मेरी बड़ी बहन का भी बर्थडे है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बर्थडेज के बारे में बात करना। एंड कभी कभी होता है ना कि फैमिली में बैक टू बैक सबके बर्थडेज आ जाते हैं, कि दो तीन दिन जैसे बर्थडे महोत्सव चल रहा हो, एनिवर्सरी महोत्सव चल रहा हो, ऐसे होता है फैमिलीज में कई बार सबके बर्थडेज आते हैं साथ में, हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। अब कई लोग जिनको मैं जानती हूँ, दे डोंट बिलीव इन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, पता नहीं क्यों। एक साल ज़्यादा हुआ, एक साल कम हुआ, अभी ये कैलकुलेशन हर इंसान अपने हिसाब से करते रहता है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है हर चीज़ के लिए, चाहे कोई भी चीज़ रहे। सो हम सब जो हैं, जैसे हमारा नेचर होता है उस हिसाब से हम बिहेव करते रहते हैं। और देखिए ना, गाने भी कितने अमेजिंग हैं, कितनी बार गानों के लिरिक्स जो हैं ये हमें समझाते हैं कि हमारा अपना नज़रिया कैसा है। कई बार होता है ना, आप गाने सुन के, अरे ये तो मेरे दिल की बात थी, अरे ये तो मेरे मन की बात थी, है ना, ऐसा हो जाता है। तो बस वही होता है यहाँ पे शो पे। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी, मंडे से लेके फ्राइडे शाम 7 से 10 सुनते हैं इस शो को आप। और इस आवर का आखिरी गीत और भी बढ़िया सा गीत है, सुनाएंगे, बात अभी और बाकी है दोस्तों।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128.96 Indian rupee, 369.98 Pakistani rupee, 447.4 Sri Lankan rupee, 164.49 Bangladeshi taka, 87.74 Afghani, 172.39 Kenyan shilling, 1.33 US dollar, 62.82 Mauritian rupee.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £97.84 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: मुकेश जी की आवाज़ में आप सभी को सुनाया था जिस देश में गंगा बहती है, 1960 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, एंड राज कपूर जी पे ये फिल्म आया गया था शायद, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। तो कल होगा फ्राइडे, फैंटेस्टिक फ्राइडे, मतलब कैलोरीज बर्न करने वाला दिन। कंटिन्यूस ऐसे सॉन्ग्स बजते हैं इस शो पे जहाँ पे आपके पैर थिरकते रहते हैं, अभी नहीं थिरक रहे पैर ऐसी बात नहीं, लेकिन आप डांस करने लगते हो, दैट इज़ फैंटास्टिक फ्राइडे फॉर ऑल ऑफ यू। तो कल जल्दी जल्दी खाना वाना खा के फिर शो ट्यून इन करिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि खाना खाते खाते डांस भी कर रहे हैं और खाना भी कर रहे हैं, है ना। अब इस आवर का आखिरी गीत दोस्ताना फिल्म से सुना रहे हैं आपको, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो लोगों की ज़िंदगी में दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, उन लोगों की लाइफ में जिनके दोस्त होते हैं। आई एम तो ब्लेस्ड विद फैंटास्टिक फ्रेंड्स इन माई लाइफ, एंड दोस्ती इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है ना, मुझे लगता है दोस्ती में ना हम सामने वाले को बदलने नहीं जाते, वो जैसा है ना वो इंसान, उसको हम वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी रिश्तों में हम लोग क्यों नहीं करते ऐसे, दोस्तों की तरह जो होता है ना कि दोस्त में मस्ती चल रही है, ठिलवईगिरी चल रही है, टांग खिंचाई चल रही है, लेग पुलिंग, और उसमें बुरा लगता भी नहीं है, पर बाकी रिश्तों में क्यों लगता है, सोचिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए आइडियली। चलते हैं आखिरी गीत की तरफ।
1: Reminisce those classics on Leica Gold. The Evening Show with Ashwini.
2: Leica Gold. Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se. With the legendary Anup Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
6: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
7: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
9: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
10: परंपरा भी
11: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 0779518100
1: डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज
12: द इवनिंग शो विद अश्विनी
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। इस आवर का आगाज हमने किया था बरसात फिल्म का, जो गीत नहीं ये हो नहीं सकता, कुमार सानू एंड साधना सरगम की आवाज़ में। उसके बाद मन चली किशोर कुमार एंड आशा भोसले की आवाज़ में बरसात के एक रात से लिया था ये गीत। अब इस आवर में गज़ल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली, आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आते रहते हैं जब हम गीत प्ले करते रहते हैं, और किस तरीके से ये गीत आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप बताते हैं। ये देखिए, यही तो मज़ा है म्यूज़िक का, कि म्यूज़िक हमारे साथ साथ निरंतर चलते रहता है। हम अपने काम काज भी करते रहते हैं और पीछे म्यूज़िक जो है हमें अच्छे पॉजिटिव वाइब भी रखता है, और हमारे विचार जो हैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं दौड़ते।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपीस एंड 30 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: सरस्वती चंद्र से सुनाया आप सभी को ये गीत मुकेश जी की आवाज में, आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा मालिनी, उनकी एक फिल्म का गीत सुना रहे हैं आपको, एंड दिस ट्रैक आप सब बहुत पसंद करेंगे, किशोर कुमार की आवाज में, अंदाज फिल्म से जिंदगी एक सफर।
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना, परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा, 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में, समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक, नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
9: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे।
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रैक, अंदाज फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत, फिल्माया गया था राजेश खन्ना एंड हेमा मालिनी पे। गजल या कवाली में क्या सुनाने वाली, तो नेक्स्ट आ रही है गजल जगजीत सिंह की आवाज में सरफरोश फिल्म से।
1: ये है लाइका गोल्ड,
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
5: Ghazal.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.95 Indian rupee, 370.1 Pakistani rupee, 447.42 Sri Lankan rupee, 164.49 Bangladeshi taka, 87.74 Afghan Afghani, 172.42 Kenyan shilling, 1.33 US dollars, 62.82 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.88 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 46 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। थ्रिलिंग थर्सडे मनाया आपने और हमने साथ में। गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विसेज जरूर सुनिएगा, लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। हमेशा की तरह यही कहेंगे भाई कि प्यार जिंदगी में बहुत अहम है, तो प्यार दो, प्यार लो, एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए। आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता होगा। लाइफ बहुत बहुत सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, कम्युनिकेट करें, नोबडी कैन रीड योर माइंड, है ना। तो जो भी अपने दिल में बात है कहिए, बैठिए, उसे सुलझाइए, रिश्तों को तोड़िए मत, क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना फिर से बहुत मुश्किल है। कल है फैंटास्टिक फ्राइडे, तो तैयार हो जाइएगा अपनी कैलोरीज बर्न करने, खा पी के डांस मस्ती के लिए ऑन फैंटास्टिक फ्राइडे विद द इवनिंग शो अश्विनी के साथ में। गुड नाइट, लव यू ऑल।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Laika Gold.
1: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Center. Book your tickets now at harrowarts.com. Laika Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Laika Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
6: You know how fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
8: Sari Raat, Bollywood classics ka saath, sirf Laika Gold par.

कह गए गंगाराम हो मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम, हम तेरे हैं गुलाम, हम तेरे हैं गुलाम।

मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम।

0: नायका गोट।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
0: साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: My fans shout at football matches.
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर